स्वर्धुनि विराजित मस्तकी शुभ्रजटा मुकुटमंडित सर्पमणियुक्त विराजित किशोरचंद्र भाली मिरवत भस्मचर्चित शुभ्र

नीलकंठ दशभुज आयुधे सघट झलकति प्रलय चपले ऐसी खड्वांग त्रिशूल कपाल डमरु अंकुश पाश घंटा नागधरु पिनाक पाशुपत कमल तेजाकारु शुभ्रवर्ण आयुधे शुभ्र तेजस्वी शार्दूल चर्म वसन शुभ्र स्फटिक वर्ण गजाजिन मणिमय शुभ्र सिंहासन नाना रत्ने विराजित कैलासगिरी शुभ्रवर्ण वरिमंडप शुभ्र सहस्रयोजन स्तंभ विरहित सहस्रकिरण

चंद्रशेखर चतुर्भुज पाशांकुशधर गदा पद्मयुक्त जे सुरतरु सुमन माला युक्त मल्लिका बकुळ कमळी विराजित इभ मुक्तावतंस डोलत शोभा अद्भुत कोणवर्णी हरिमध्या भुजंगवेणी जलजवदना आकर्ण नयनी द्वादशादित्य शोभा जघनी कांचीवरी झळकतसे मागे स्त्रिया वर्णिल्या बहुत निस्सीम रूप लक्षण युक्त ओवाळुनी टाकाव्या समस्त

पशमनी त्रिकाळ जे सादर तव ध्यानी त्रिदेह विरहित ते शिवमानस सरोवर मराळिके जय जय विज्ञान चंपक कळिके।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

गर्धुनी विराजित मस्तकी शुभ्र जटा मुकुट मंडित सर्पमणि युक्त विराजित किशोर चंद्र भाली मिरवत भस्म चर्चित शुभ

नीलकंठ दशभुज आयुधे सघट झलकति प्रलय चपले ऐसी खड्वांग त्रिशूल कपाल डमरु अंकुश पाश घंटा नागधरु पिनाक पाशुपत कमल तेजाकारु शुभ्रवर्ण आयुधे शुभ्र तेजस्वी शार्दूल चर्म वसन शुभ्र स्फटिक वर्ण।

शेखर चतुर्भुज पाशांकुशधर गदा पद्मयुक्त जे सुरतरु सुमन माला युक्त मल्लिका बकुल कमली विराजित इभ मुक्तावतंस डोलत शोभा अद्भुत कोणवर्णी हरिमध्या भुजंगवेणी जलजवदना आकर्ण नयनी द्वादशादित्य शोभा जघनी कांचीवरी झळकतसे मागे स्त्रिया वर्णिल्या बहुत निस्सीम रूप लक्षण युक्त ओवाळुनी टाकाव्या समस्त

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।